बारी है जो आया सुचल से सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है तो सारा मन विसारी है अपना हाथी अपना पिंगा सवारी है अपनी पिंगा सवारी है।

साक्षी फ्राक्रय मार्ग नागली जंजीरिया त्रि चढ़ा विश्यार आप क्रय करे आप हो कैसे करे पुकार नानक करना जिनकिया फिर तसे करनी सार नानक करना जिनकिया फिर तसे

जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु साहेब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे। जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। हर नाम मंत्र दड़ाइंदा कट्टे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संयोग। तुदया गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा। डंडौत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सत्कारयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज दी पावन हजूरी च जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ी बार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहब जी पासो सरवन कीता। पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। गुरु पातशाह जी अज दे शब्द राहीं मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा

इस लई फिर शांत रूप विच गुरु रामदास महाराज दोहराउंदिया होया कृपा करदे ने कि गुरु जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। आपां सारे जिन्ने बैठे हाँ जां जिथों तक आवाज़ जा रही है अपने अंदर झाती मार के कहो कि मैं ये गल कह सकदा कि गुरु तो बगैर मेरी जिंदगी विच होर कोई नहीं है। मैं गुरु दे बराबर अपनी जिंदगी विच किसे होर नू कुछ नहीं समझदा। किन्ने कु ने जिहड़े इस ते खरे उतरणगे, नहीं ते अद्धियां दे सिर झुक जाने, नीवियां पै जाणियां। क्यों? क्योंकि मैं सवेरे गुरु कोल हुन्ना ते शामी किते होर हुन्ना, सोमवार किते हुन्ना ते मंगलवार किते हुन्ना। मैं ते शनि भी नहीं छड्डिया, मैं ते पीर भी नहीं छड्डिया, मैं ते कोई सियाणा भी नहीं छड्डिया। फिर उत्थे ये सिर उच्चा नहीं नीवा हो जाएगा, नीवी पै जाएगी कि मेरी जिंदगी च तां पता नहीं किन्ने ने। पर जे असीं माण महसूस करदे हां कि मेरी जिंदगी विच एक केवल ते केवल एक गुरु दा ही सहारा ते गुरु दा आस भरोसा है, फिर ते असी गा के खुशी नाल दुनिया नू दसांगे। गुर

तुम पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मनवजियां वधाइयां राग रतन परिवार परियां शब्द गा बनवाइया शब्द ता गावो हरि के रावन जिनी वसाया कह नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे आ सदा

0: रूप ते मुख उजले के ते श्रुति वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तो ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम बारग तेरे तुमरी कृपा मैं कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते सगल समगरी तुमरे सुतर तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की बात सही दसवीं प्रथम।

सिमरो श्री हर राये श्री हर कृष्ण ते आइए जिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई, तिक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जमत्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, सुख होटल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए, दर्श

सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवय करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवैरन को आय संग्रिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुए छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारी है। आभा दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हो जो सदा हमारे पछा, श्री अस्तु जो करिहो रक्षा। राख लियो मुहे रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाश, सकल काल का किया तमाशा। जौन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जौन काल सा लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जौन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिंटी ते कुंचरया स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पड़ पड़ की जाने। जाव उदकर्क करा कर तारा, प्रजातर्त तव देहे अपारा। जाव आकर्क कर तुहों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम। ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड़ विचारत भेदा, जा को भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहण अनुमानत, महामूड कछ भेद ना जानत। महादेव को कह सदा शिव, ड्रंकार का चीनत न है पिव। आप अपनी बुद है जेती, वर्णद भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। इक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा। अंड जेरा से तज कीनी, उतपज खान बहुर रच दीनी। कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमड़ भयो।

ही आपे तरस पय होई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई।

बलावल महला पंजवा एव सागर सोई तरे जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसे वडवागी पाए यह सागर सोई तरे जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसे वडवागी पाए सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पई सबलो में सेवक की राखी राहाओ अग्न सागर ते कांडया प्रभ जलन बजाई अमृत नाम जल संचया गुर पै सहाई जन्म मरण दुख काटया

की अपने प्रभु पाया मत कोई जाना अवर कछ सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ जन्म मरण दुख कटिया सुख कथान पाया कटी सिलक भ्रम मोकी अपने प्रभ पाया मत कोई जानह अवर कछ सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन सा

अमरदास परसिया पोहम पातिक बिनासै। गुर अमरदास परसिया सिद्ध साधक आसासै। गुर अमरदास परसिया ध्यान लइए पो मुक्कै। गुर अमरदास परसिया अबो लभै गो चुकै। एक बिन दुगन जो तो रह जा सुमंत्र मान वैल है। जाल पाप दारथ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रहो। ताते अंगद लहना प्रगट तास चरल ता

जो गुण अलख अगम तिनै गुण अंत न जानो, बोथ्यो विदाते निर्मयो सब संगत

कलातार जग में परवर्यो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो। जय कहते परपूर शब्द दीपक दीपायो। जय सिखे संग रहो तत हर चरण मिलायो। नानक कुल निमल अवतरे।

जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखै शरण परे ते उबरै छोड़ जमपुर की लिखै भगत पै परपूर हृदय उच्चरै करतारै गुर गोहर दरियाओ पलक डुबंतै तारै नानक कुल निमल अवतरियो गुण करतारै।

चित चितवो अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं। सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तकूं। तेरे हुकम पवे निशान तो करो साहिब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे।

0: क्रोध वश करे, पवन उड़ंत न तावे, निरंकार के वसे देश, हुकम बूझ विचार पावे। कल माहे रूप करता पुरख, सो जाने जिन किच कियो, गुर मिलियो सोए पिखा कहे, सहज रंग दर्शन दियो।
1: रहयो संत हाँ टोल, साध बहुत तेरे डिठे, सन्यासी तपस्य है मुखो ए पंडित मिठे, बरस एक हो फिरयो कि नैन हो परचो लायो, कहत्या कहती सुनी रहत को।

ज्ञान है आसन चढ़ियो धर्म तनख कर गहियो भगत सी लह सर लड़ियो पै निरभौ हर अटल मन शब्द गुरु।